नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 20 मई 2026 बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:13 पर। आज वर्ल्ड बी डे भी मनाया जा रहा है।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे। एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुंचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटिया मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुई और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रही। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुई। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे, पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहां से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल न कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक, रुक रुक, रुक रुक, रुक रुक, जाना।

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी वर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले, वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौरी गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, एसडी बर्मन, एस मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार गुदगुदाता हूं, हंसाता हूं, रुलाता हूं अपनी बातों से, अपनी कहानियों से। आज कुछ ऐसी बात कहने आया हूं जिसको आप सुनेंगे तो शायद अफसोस करेंगे कि हमने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया। आप इसको अपने पास किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं आपको भक्ति के दोहे बता रहा हूँ और उन दोहों में स्वास्थ्य के राज छुपे हुए हैं। तो आप सिर्फ सुनिए और इस पर समझिए, अगली बार उसको स्टोर कीजिए। तो दोहों के बीच में कहा यह गया है कि पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए अच्छे हों हालात। ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कबज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। प्रातः काल पानी पिए घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास है और औषधि का बाप। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा ये तो बंटा थार। भोजन करें धरती पर पलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए वैद न झांके द्वार। प्रातःकाल फल रस लो, दोपहर लस्सी छांस, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। एल्युमिनियम के पात्र का करता जो उपयोग, आमंत्रित करता वो सदा 48 रोग। फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बड़े व्यक्ति। आप सोचते होंगे ना कि बीच में रुका क्यों हूं? बताता हूं आपको, मैं भी मोटा नहीं खा पाया। कहने के टाइम फिर याद आया कि हाँ, मुझे घर पर जाकर बताना है कि जो गेहूं है वो मोटा पिसवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ लोगों को बताते रह जाऊं और मेरे अपने दिल में विरक्ति हो जाए। तो चाहिए अगले दोहे के ऊपर आते हैं कि रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए। क्या कहा? रोज, एक दिन की बात नहीं है। रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी बच जाएगा जाने सकल जहान। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद ले रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद का लुट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी और मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइटिस या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रासा, पानी पीजे बैठकर कभी न आवे पासा। रक्तचाप बढ़ने लगे रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाप, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। हैं तो दोस्तों बहुत कुछ जो मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें, लेकिन बात तो तब है ना कि हम अमल कितनों पर करते हैं। इसलिए आज इतने ही तो है। जब आप बताएंगे ना कि आपको इनसे कुछ लाभ हुआ और आप और सुनना चाहेंगे, फिर मैं आपके लिए और भी दोहे तैयार करूंगा और आपको उन दोहों से भी मुखातिब करूंगा। फिलहाल अपने इस रेडियो दोस्त को इजाजत दीजिए। अगली बार तक के लिए एक और नई रचना लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे रेडियो वितस्ता को, और आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हमारे को हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर सूचित करना मत भूलिए। और साथ ही हमें बताइए आपकी पसंद क्या है, आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बगत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: दोस्तों खुश आमदीद, मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा।

समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो, इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसो दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी आप।

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

या एक पहेली, एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका। और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा ये जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

जो रुक गए कदम, तो शायद बहक गए, भटक गए, ये रास्ते आखिर जाते कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो, पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए, जो कभी पीछे छूट गए थे वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे, लेकिन लेकिन नए परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ, आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते ही बेपरवाह।

फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश करेंगे RJ किरणी।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी, आपके साथ सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद, और आज आपको मैं सुनाती हूं चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज हैं। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है।

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: योसा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। स्टूडियो में आमंत्रित हैं कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला, उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी लेके आया हूँ काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का एक नया अंक। हमारे प्रदेश और अंबाला के कवि कवित्री आज देश विदेश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपनी कविताओं के मधुर शब्दों से वो सब बता देते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा है। आज ऐसे ही मेहमान और एक कवित्री हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। उनसे आपको रूबरू करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि गत 30 जुलाई 2023 को उनकी पहली कविता संग्रह अनकहे एहसास का विमोचन हुआ अंबाला की एक सांस्कृतिक संस्था कला शिल्पी द्वारा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कदरदानों की। करते हैं स्वागत आज की शख्सियत कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में।
5: बहुत शुक्रिया आपका।
0: आप अपने जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जन्म कहाँ हुआ और शायरी की ओर कब से आप रागिब हुए?
5: जी, तो मेरा जन्म हुआ शाहबाद मारकंडा में, हरियाणा, विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटिफुल ग्रेन्स। बचपन से ही मैं अपने फादर से काफी इंस्पायर्ड रही हूँ। मैंने अपनी पहली कविता आई थिंक 10 साल की उम्र में लिखी होगी। तब से ये था कि दिमाग में जो भी इमोशन आए, एहसास आए, जो आप नहीं कह पाओ, वो लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस करती थी। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 10 आई थिंक। मेरी एडुकेशन विश्वास स्कूल शाहबाद मारकंडा में 10th तक हुई, फिर मैं चंडीगढ़ चली गई। 11th 12th BCom ऑनर्स, MCom सब मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मेरे करियर की शुरुआत SD कॉलेज अंबाला कैंट से ही हुई। आई वर्क देयर एज अ लेक्चरर फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद शादी दिल्ली में हुई, वहाँ MIT यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 साल काम किया। करंटली आई एम वर्किंग एंड स्टेइंग इन दुबई, वहाँ पे मैं DPS स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ। और शायरी का शौक बहुत ज्यादा है, तो इट्स कंटिन्यूइंग विद मी एज आई एम ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग।
0: हमारे श्रोता इस समय ये जान रहे हैं कि जब हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं तो बहुत सारे मरहलों को हम क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे कहा कि आप ने पंजाब अंबाला, अब आप दुबई में रह रहे हैं, तो जो ये सफर है हमारी जिंदगी का, क्या एक अनुभव मिलता है हमें जब हम हर दिन कुछ नया देखते हैं?
5: आई एम श्योर, आई थिंक हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है, ना कोई जगह है. बी इट चंडीगढ़ या अम्बाला या दिल्ली या फिर दुबई, हर स्टेज पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी. इनफैक्ट कहने को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो यस, इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज ईयर्स. मैंने पर्सनली बहुत सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत ग्रो किया मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे. हाँ जी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम इट इज़ अ लर्निंग जर्नी.
0: और कवि या कवित्री के लिए ये जो सफर है, ये कितना अहम और जरूरी है?
5: पर्सनली ये

0: में भी लय होना जरूरी है।
1: आई थिंक जिंदगी में हर चीज में लय होना जरूरी है, ताल होना जरूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शायरी। शायरी में तो ताल या लय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट ऑल्सो इज रिदमिक पोएट्री, बिकॉज मेरी हर उसमें आप देखेंगी कि ताल है। कहीं कोई भी चीज बेताली होगी तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे या उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक यस, हर चीज में लय ताल की बहुत जरूरत है।
0: हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये काव्य गोष्ठी कार्यक्रम है, तो अब हम कविता की ओर आते हैं। आपकी पहली कविता संग्रह से कौन सी कविता का पाठ हमारे श्रोताओं के लिए आप आज सबसे पहले करना चाहेंगे?
1: तो मेरी ये कविता जो मुझे बहुत पसंद है, ये औरत पे डेडिकेटेड है
0: जी।
1: तो मैं ये कविता सुनाना चाहूंगी। ये औरत है। कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी चंडी बन जाती है, ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ कर रखे जो, ख्वाहिशों के बिखरे मोती संजो के रखे जो, अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में छुपाती है, ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। कभी पिता, कभी पति, कभी बच्चों की सुने, ये भी उड़ना चाहे पर ख्वाब उनके लिए बुने, गीली मिट्टी है ये, हर सांचे में ढल जाती है, ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। ऐसा नहीं कि ये कम है किसी तरह, है जोश, है काबिलियत और है लबों पर दुआ, अकेले राह पर निकले काफिला बनाती है, ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी चंडी बन जाती है, हाँ ये औरत कमाल कर जाती है।
0: बहुत खूब, बहुत
1: शुक्रिया
0: रिदम जी। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे थे तो आप केवल पढ़ ही नहीं रहे थे बल्कि आप अपनी जो शक्ति है उसको भी बयां कर रहे थे। हमारा परिवार तभी पूरा होता है जिसमें माँ होती है, बहन होती है और बाकी सारे हमारी बेटी होती है। तो जब आप ये शब्द लिखते हैं तो क्या उस समय ख्याल होता है जब आप ये शब्दों का जाल बुन लेते हैं?
1: आई थिंक जो जब मैंने ये कविता लिखी थी, मैंने देखा कि वी वुमेन हम यूजुअली खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम दूसरों के हिसाब से जीते जाते हैं। जब पहले हम सुनेंगे अपने पिता की, फिर बड़े हुए पति की सुनी, अब बच्चे सुनाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। हमारे अंदर भी ख्वाब है, हम भी उड़ना चाहते हैं, बट उनको देखते हुए हम सोचते कि नहीं, पहले पिता के लिए कर लें, फिर पति के लिए कर लें, फिर बच्चों के लिए कर लें। तो वी एक्चुअली अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स और हम अपने लिए नहीं जीते। तो दिस पोएम आई रोट टू मे बी इंस्पायर अदर वुमेन सो दे शुड रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनको पता चले उनमें कितनी काबिलियत है और वो खुद के लिए भी थोड़ा जीना शुरू करें। तो दिस इज माई वे ऑफ मोटिवेटिंग अदर वुमेन, या उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना।
0: ये एक बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। हमारे देश में इस समय आप जैसे लोगों की जरूरत है जो बाकी नारी शक्ति को या तो उनको जगाए या उनको प्रोत्साहित करें ताकि जो काबिलियत उनमें है वो काबिलियत को सामने ले आए और हम देश को मिलजुल कर आगे की ओर लेके जाएं।
1: जी शुक्रिया। एक और मैंने पोएम, जैसे आपने माँ का जिक्र किया तो मैंने एक माँ पर पोएम लिखी थी। ऑफ कोर्स कोई भी घर माँ के बिना पूरा नहीं हो सकता। एज अ मदर आई रियलाइज कि हम ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं और कम अपने आप के लिए जीते हैं। तो ये पोएम मैंने डेडिकेट की है हर माँ को। तो कहते हैं, रब का दूसरा नाम होती है माँ जैसी, बस माँ होती है, घर वो मुकम्मल है बस, माँ की इबादत जहां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है, हर रिश्ते में है खुदगर्जी, लालच बिन बस माँ होती है, रब का दूसरा नाम होती है, हर कोई जब मुंह फेरे इसके लब पर हां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है, माँ की गोद है मुझे बताती क्या दोपहर में ठंडी छां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है।
0: बहुत खूब, आपने माँ शब्द इतना बड़ा शब्द है, इसके बारे में

0: जितना भी हम वर्णन करें पूरी जिंदगी में
1: जी,
0: वो कम है। माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए हमें करना चाहिए, जितना भी हम करें उतना कम है, क्योंकि हमारा वजूद हमारे माता पिता हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: रिदम जी, क्या आप मानते हैं कि लेखिका बनना आपकी विरासत में है? क्योंकि आपके पिताजी सरदार कुलवंत सिंह रफीक जी एक जाने माने कवि है हमारे देश के।
1: जी बिल्कुल, मैं उनको देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ, और मैं आई थिंक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा पोएट बनना, अपने कला को कैसे बेटर बनाना, वट एवर आई हैव लर्न्ड आई ओ इट ऑल टू यू, ऑल टू हिम। जहाँ तक भी जो भी अचीव किया है, पोएट्री बुक हो या स्टेज कंडक्ट करना हो या एंकरिंग करनी हो, आई रिमेम्बर आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट ओरेटर इन द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट, एंड आई ओ इट ऑल टू हिम। उनको देख के कैसे वो बोलते हैं एज अ इंसान, हाउ ही इज एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक आई हैव लर्नड दिस ऑल फ्रॉम हिम ओनली। और ही इज़ अ डिक्लेयर्ड पोइट इंटरनेशनली ऑल्सो, वो मुशायरों में पार्टिसिपेट करते हैं, पोइट्री कहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अगर मैं उनका 1% भी बन पाऊँ तो आई थिंक आई फील कि आई हैव डन जस्टिस। तो यस, लेखिका बनना मेरी विरासत में ही है, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ऑफकोर्स ऑल माइटी की ब्लेसिंग्स के बिना, और उनकी ब्लेसिंग्स, माई फादर की ब्लेसिंग्स के बिना ये नहीं हो सकता था।
0: बहुत अच्छी बात है। सरदार कुलवंत सिंह रफीक लिखते हैं, रफीक जो है एक उर्दू लफ्ज है, रफीक का मतलब सबका रहबर, सबको रास्ता दिखाने वाला
1: जी।
0: तो ये जो तखलुस है, तो इस तखलुस के बारे में क्या आप बता सकते हैं, उन्होंने अपना जो तखलुस है रफीक क्यों रखा?
1: आई थिंक ये जो तखलुस है उससे वो पूरा जस्टिस करते हैं। आई थिंक दिस इज वॉट ही इज, ही इज अ रहबर, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ गाइड, हर किसी के साथ चलने वाले हैं, हर किसी की हेल्प करने वाले हैं, चाहे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करनी पड़े। तो आई थिंक द वर्ड रफीक इज सिनोनिम टू हिज पर्सनैलिटी, तो उनको पूरा सूट करता है, पूरा जस्टिस करता है। और उन्होंने शायद ये सोच के रखा कि वो ऐसा बनना चाहेंगे, और हाँ उन्होंने ये अचीव किया है।
0: बहुत अच्छी बात है। और साथ में जब परिवार पूरा होता है एक बच्चे के लिए, माता और पिता, और ऑब्वियसली माँ जो आपके जीवन में एक स्थान रखती हैं, सबके जीवन में स्थान रखती हैं, माँ के बारे में भी आप अगर कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा।
1: जी, माँ के बिना तो हम खुद सब इनकम्प्लीट हैं जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार जो खुदा थे वो माँ से रूठे थे, तो खुदा ने माँ से कहा कि सब कुछ तो मैं करता हूँ, तुम्हें क्यों सब इतना प्यार करते हैं जी। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि एक रोज़ खुदा ने माँ से शिकायत की है कि क्यों मेरे बच्चों ने तेरी इबादत की है। हंसकर बोली माँ कि 9 महीने ज्यादा मैंने इसकी हिफाजत की है, हर गम सहा पर न शिकायत की है, तो क्यों ना तेरे बच्चों ने फिर मेरी इबादत की है और मुझसे मोहब्बत की है। तो जी, माँ इज सिनोनिमस विद खुदा, हमारे लिए तो खुदा धरती पर माँ ही है।
0: बहुत खूब आपने माँ का वर्णन उस तरीके से किया, और मैं अपने शब्दों में जब माँ की बात करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ माँ अनमोल
1: जी।
0: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप संगीत भी सुनती हैं?
1: जी जी जी।
0: तो अगर आपको माँ को याद करना हो कभी, तो आप किन शब्दों में अपने पेरेंट्स को, खास करके माँ को याद करती हैं? क्या आप कुछ उनके लिए गुनगुनाते हैं या कैसे याद करती हैं?
1: जी, तो माँ के लिए मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो गुनगुनाती हूँ कि

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय FM 90.0 पर कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और बात हो रही है माँ की। आइए आपको सुनाते हैं रिदम जी का ये मन पसंद माँ के लिए ये गाना।

0: रिदम जी, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, और ये हमारे श्रोताओं के मन में भी ये प्रश्न होगा कि लेखक के मन मस्तिष्क में कब लिखने का ख्याल आता है? क्या कोई समय निर्धारित होता है लिखने के लिए?
1: आई थिंक कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब भी मन में कुछ कोई फीलिंग या कोई इमोशन बहुत बढ़ जाता है और हम उसको नहीं कह पाते किसी और से, तो पर्सनली आई फील कि तब हम उसको पोएम्स के माध्यम से जाहिर करते हैं। जैसे आई थिंक श्रोता भी मुझसे अग्री करेंगे कि हम जो लिखते हैं, हम लोगों के पास एक डायरी ज़रूर होती है। जब भी कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ लव्स हमें आए, कुछ शब्द हमें आए, लगे कि वी शुड बी राइटिंग दीज और एक्सप्रेसिंग दीज, तो हम उस डायरी में लिख देते हैं। तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है। कई बार तो मैंने बच्चों की इन्विजिलेशन करते हुए, कुछ देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने वहीं से टिश्यू पेपर लिया और वो पोएम मैंने वहीं पर लिख दी। तो ये ख्याल, ये इमोशन कभी भी हम पे हावी हो सकता है और इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यूजली वी राइट ऑन अ डायरी या फिर कोई भी पीस ऑफ पेपर जो भी अवेलेबल हो।
0: तो क्या हम इस बात को माने कि अगर एक ख्याल दिमाग में आता है और अगर हम उस समय उसको लिखे नहीं, नोट नहीं करेंगे, क्या वो हमारे मन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
1: आई थिंक थोड़े समय तक ही मन में रह पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लिख लें कहीं, ताकि जो भी शब्द जो भी हमारे मन में आए हैं वो शब्द हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ जैसे हमारे दिमाग में हैं। तो लिख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा कि वो हमें उसी टाइम याद रहेगा। बाद में हो सकता है कोई शब्द आगे पीछे हो जाए, तो आई पर्सनली फील लिखना अच्छा है।
0: तो इस डायरी को आप कैसे श्रोताओं के सामने रखेंगे, जिस डायरी की आपने बात की?
1: जी, मेरे लाइफ में मेरी डायरी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। छोटे होते से ही, जब स्कूल में किसी सहेली से ही कोई छोटी सी झड़प हो जानी या कुछ, तो मैं वो भी आके अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो डायरी मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। तो मैंने एक पोएम अपनी डायरी को डेडिकेट की है। तो इट गोज़ कि जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये कुछ नहीं कहती, ये सब सुनती है, संग मेरे नामुमकिन से ख्वाब बुनती है। कहीं किसी पन्ने में कोई चोट छुपाई है, तो कहीं अशकों से भीगी स्याही है। कहीं लिखी मैंने कोई अधूरी कहानी है, कहीं बचपन के पल, कहीं गुस्ताख जवानी है। दो पन्नों में एक सूखा गुलाब है, दिल के सौदों का जो करता हिसाब है। लिख कर कहीं कोई धुन मैं गुनगुनाती हूँ, जो अनकहे एहसास हैं इसको बताती हूँ। जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये है मेरी डायरी।
0: बहुत खूब आपने इस डायरी के माध्यम से ये बताया, और इसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनकहे एहसास। तो अनकहे एहसास के बारे में आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं, ये अनकहे एहसास क्यों है?
1: जी, तो एज वी मूव ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते। तो मेरे जैसे लोग तो वो डायरी में लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जज्बात उनके मन में ही रह जाते हैं। तो मैंने जो मेरी पहली बुक है उसका शीर्षक है अनकहे एहसास, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे इमोशंस हैं जो मैं किसी को कह नहीं पाई, तो वो मैंने अपने पोएम्स के माध्यम से जाहिर किए हैं। तो हेंस द टाइटल अनकहे एहसास। ऐसे बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं की होंगी, तो वो हम ऐसे कुछ फीलिंग्स हम इस बुक में भी पढ़ सकते हैं।
0: रिदम जी, मैंने आपकी जो ये अनकहे एहसास है इसको पढ़ा है
1: जी।
0: इस पे मेरी जिंदगी के साथ एक कविता जुड़ी है जिसका शीर्षक है अपना घर।
1: जी,
0: घर एक व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके जीवन में उसका क्या असर होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता जरूर पढ़ें।
1: जी, ये कविता अपना घर मैंने ये सोचकर लिखी थी कि हम ता उम्र स्पेशली हम औरतें यू नो ता उम्र अपना घर ढूंढ रहे होते हैं. पहले जब माँ बाप के घर में होते हैं तो होता है कि चलो इसने दूसरे के घर चले जाना है. जब शादी होती है उनके घर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो यू नो माँ बाप के घर से आई है. तो हम ताउम्र यही ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा कौन सा घर है. लाइक व्हेन आई शिफ्टेड टू दुबई, ऑफकोर्स वो उनका घर है जिनसे हमने लीज पे लिया है. तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा घर कौन सा है. तो आई फेल्ट कि वी शुड बी मेकिंग अ घर इनसाइड अस. हमें अपना घर अपने अंदर ढूंढना चाहिए ताकि कुछ भी बदले, कोई आए कोई जाए, कोई तुम्हें वैल्यू करे या नहीं करे, तुम खुद को वो वैल्यू दे पाए.
0: हमारा अपना घर हमारे साथ चलता रहे.
1: जी, जी जी जी. और चाहे निगाहें बदलें, वफाएं बदलें, आपका घर आपके अंदर हो तो आप कभी बेघर नहीं होगे. तो उस पे मैंने लिखा था अपना घर. तो ये दिस गोज की सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. जहां न कोई बोले कि हम धन पर आए हैं, ना कोई सोचे कि दूजी जगह से आए हैं. जो हर हाल में अपना समझे वही नजर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. पड़े जो हम पर पत्थर इसकी नींव में भर देंगे, प्यार वफा के रंगों से दीवारें रंग देंगे. जो मंजिल तक पहुंचाए वो एक डगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. जो फिर किसी के दिल में आशियां बनाएंगे, जो बदली उनकी वफाएं तो बेघर हो जाएंगे. जो मांगी थी दुआएं उनमें असर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं. सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, बस अब अपने अंदर अपना घर ढूंढते हैं.
0: बहुत खूब, बहुत खूब. आपने रिदम जी मेरे अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं इस कविता के माध्यम से. हमारी कोशिश है कि हम जब भी कोई शब्द लिखें, अगर वो किसी के लिए मरहम का काम करती है, इससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं हो सकता है. क्योंकि मैं अपने जीवन में अपना घर खो चुका हूं
1: जी.
0: और पिछले 33 वर्षों से मैं अपने ही देश में विस्थापित हूं. तो मेरे लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी बात है. तो आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि वो जो घर हम पीछे छोड़ आए हैं वो घर आज के बाद मेरे मन में होगा. जहां मैं हूं वहां मेरा घर होगा. इसके लिए आपका हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद.

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती रिदम डडियाला जी। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है, आइए बातचीत जारी रखते हैं रिदम जी से। रिदम जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि कविता या शायरी मरहम या सुखद एहसास का अनुभव पढ़ने वाले को या सुनने वाले को देती है?
1: जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ फील कर रहे होते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ तंग कर रही है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है और जब कभी मैं किसी और की शायरी सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा लगता है किसी को सुन के या समझ के ही सॉल्व हो गई है। तो बिल्कुल, आई थिंक पोएट्री कैन बी अ मीडियम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कंफर्ट देने के लिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत इश्यूज पे। तो यस, इट इज़ डेफिनेटली अ मीडियम। तो मैंने ये एक कविता लिखी थी कि आई फील कि हम लोग ना लेट गो नहीं करते। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा, प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि हम पास्ट को पकड़ कर बैठे हैं, अपने पुराने जख्मों को पकड़ कर बैठे हैं जो हमें मेंटली ख़राब कर रहा है, हमें इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा हेल्थ ख़राब कर रहा है। तो इफ़ दिस पोएम ऑफ माइंड कुड हेल्प एनीवन टू लेट गो देन आई विल फील कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक अचीव हुआ है
0: जी।
1: तो मैंने एक पोएम लिखी थी, रोको मत जाने दो
0: जी।
1: तो वो कहते हैं कि रोको मत जाने दो, बचपन में ये कहीं पढ़ा था, पढ़कर बस हवा किया था, इन लफ्जों में थी कितनी गहराई, ये बात आज समझ में आई। रोको मत जाने दो, जाने दो हर उस बात को, अधूरी सी मुलाकात को, हर एक झूठे जज्बात को, आंसुओं में भीगी रात को, रोको मत जाने दो। जो तुम्हारी आहट से उनका चेहरा न खिले, आंखें नम हो और दिल न पिघले, संग तुम्हारे चल उन्हें मंजिल न मिले, दर्द देने के तुम्हें चलते रहें सिलसिले, तो रोको मत जाने दो। हर ख्वाब हो पूरा जरूरी नहीं, हाँ थी एक कहानी अधूरी रही, शायद हर तरफ मजबूरी रही, सुकून से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं, तो बस रोको मत जाने दो।
0: हाँ बस जाने दो
1: जी।
0: बहुत खूब आपने ये कविता पढ़ी और रिदम जी से जानना चाहूंगा कि रिदम जी का जीवन में लक्ष्य क्या है?
1: आई थिंक एज अ टीचर आई रियली लव माई प्रोफेशन। तो इफ आई से प्रोफेशनली एज अ टीचर, मेरा लक्ष्य है टू हेल्प माई स्टूडेंट्स ग्रो, टू हेल्प देम लर्न एकेडेमिकली नहीं, पर्सनली, कि वो अच्छे इंसान भी बने, कामयाब इंसान होने के साथ साथ। तो प्रोफेशनली येस, आई वॉन्ट टू टच देयर लाइव इन सच अ मैनर कि दे नो दैट दे हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, और जो वैल्यूज हम सिर्फ पढ़ाते हैं वो बच्चे उन वैल्यूज को इनकलकेट कर सके बाहर, मेरे स्टूडेंट्स भी और घर पे मेरे अपने बच्चे भी। तो प्रोफेशनली यस, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर्सनली एज अ पोइटिस, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं शब्द लिखती हूँ, आई जस्ट होप कि वो शब्द किसी को कम्फर्ट दे सकें, किसी को अंडरस्टैंडिंग दे सकें, किसी को इंस्पायर कर सकें, जो थका हो, हारा हो, उसको मोटिवेट कर सकें टू लिव लाइफ अगेन, एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग जॉय टू देम, आई वॉन्ट टू इंस्पायर देम। तो आई थिंक दिस इज माई वे, दिस वुड बी माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई रीडर्स। तो जी, यही मेरा लक्ष्य है।
0: इससे और बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या हो सकता है कि अगर हम जीवन में किसी के लिए एक रास्ता बना सकें या हम उनको प्रेरणा दे सकें, हम उनको प्रेरित कर सकें। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमने कोशिश की कि आज रिदम जी की जो लिखी कविताएं हैं, उनके जो शब्द हैं, वह हम आप तक पहुंचाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, रिदम जी के अच्छे दिनों की कामना करते हैं। वो ऐसे ही लिखते रहें और हमारे भारत देश का नाम जहां भी वो विश्व में जाएं, वहां उस नाम को और बड़ा करें, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और अंतिम प्रश्न अभी रह गया है रिदम जी, आप एक कवित्री है जो बच्चे या और लोग कविता लिखना पसंद करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्वरूप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: आई थिंक हमारा देश और आगे बढ़ सकता है कि जब हमारी नारी शक्ति भी अपना योगदान दे हर तरह से, जो भी उनमें टैलेंट्स हैं दे शुड ब्रिंग देम फॉरवर्ड, वो अपने ख्वाबों को जिएं, अपने एहसासों को दबाएं नहीं, उनको खुल के बताएं वो क्या करना चाहती हैं, वो आगे आएं। आई थिंक वी हैव टैलेंट इन अबंडेंस इन इंडिया, बट वो कहीं छुपा बैठा है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी विमेन कि उनमें जो भी आर्ट है वो उस आर्ट को लेके सामने आए, और दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सो मेनी वेज, एंड सो दे शुड बी डूइंग दैट, दे कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर विमेन एज वेल। तो यस, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अपना योगदान दें, प्लीज सामने आए और पंख फैलाकर उड़ें।
0: बहुत खूब, और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन, ये उम्मीद के साथ कि हर कोई नारी शक्ति अपनी काबिलियत के साथ आगे आए, अपना योगदान दे जैसे वो देती रही हैं आज तक, अब कुछ नए अंदाज से दें। और हम आपसे विदा चाहते हैं, मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, आज के मेहमान थे कवित्री रिद्धम डडियाला, रिकॉर्डिस्ट व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा 90.0 में।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। शब्द नेक कमाईयां ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द दी वीडियो जे एस कलवाना जी ने कीती है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर जोसन जी, निरवैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस कीता है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द दी वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

دويتشو بوزان نمت اشاريه صفر راديو بدستا هم سفر زندگي هون

0: परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे आशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

0: سفر زندگی ہون۔ بوزان روزیو پنین پسندید بات۔
1: ایم این اے پہ

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रस है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्तर, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंदीदा गाने।
2: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
4: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: You're

سته هم سفر

0: सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ishq एक ही रेडियो मितस्ता हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अब बालक एंड सी हमारी प्रसारण

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सफर जिंदगी का।
1: और ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर

सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।

0: रिश्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण। सुनते रहिए दिल से।
2: सही रास्ता सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक हेमलता जी। पेश करेंगे RJ किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास रेडियो प्रोग्राम सुनहरे पल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गायिका से जिन्होंने अपने शुरू से हमारे दिलों को छू लिया है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। आज हमारे सिंगर है हेमलता जी। हेमलता भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका है। 1970 के दशक के अंत से बॉलीवुड में एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही है। वह शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थी। उन्होंने खुद को फिल्म, संगीत गोष्ठी, टेलीविजन और संगीत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान की एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।

हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने उन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। इनका ये संघर्ष आगे भी रहा।

बचपन में हेमलता दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। वह परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वह परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर खुद को गाने से रोक नहीं पाती थी। बचपन के इस छोटी उम्र में ही लता जी, किशोर कुमार, हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने इन्होंने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया। फलस्वरूप हेमलता बेबी लता के नाम से मशहूर हो गई।

हेमलता जी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएगी, साथ ही साथ मैं हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर, आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया उनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र महज थी 13 साल। जिस दिन बेबी लता उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके पहले एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त एक से बढ़कर एक गीतकार के साथ काम किया। बेबी लता हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी।

इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वह उस दौर के अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। गाना कौन दिशा में लेकर चला गया, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ।

इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। रविंदर जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक सीरियल में वो अभिनय भी करती नजर आई। वह एक एपिसोड में पारंपरिक मीरा भजन

लता जी ने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 38 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गाए, परंतु इनमें से 2 एल्बम ही रिलीज हुए। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। बॉलीवुड से विदाई लेकर वह मैक्सिको चले गई। वहां उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने का काम करने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिसने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत एकेडमी शुरू की। उनकी एकेडमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के साथ साथ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस से लेकर पूरी दुनिया में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस संगीतमय यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना समय दिया और हेमलता जी के गीतों का रसवाद किया। हेमलता जी, आपके मधुर स्वर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने गीतों से सुखद अनुभव देते रहेंगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। आज के कलाकार थे पार्श्व गायक हेमलता जी। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो विद स्टार। असले पौन पटाके सुन।

0: अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: अपना बिजनेस एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रात की मुसाफिर फिरते हैं डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर गर कोई पुकारता। अपनी सोबत में रख कर ये जानने की कोशिश कर।

तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में छुपती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाती है यूं ही बेवजह।

अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

0: सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आस्था सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं।

आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:50। आप सभी श्रोताओं से हम क्षमा चाहते हैं, आज कुछ समय के लिए हमारा जो प्रसारण है बाधित हुआ, क्योंकि स्टूडियो में कुछ काम चल रहा था तो मशीन्स जो है उनको हमें बंद करना पड़ा। इस वजह से हम आपके साथ कुछ समय के लिए नहीं जुड़े। जैसे ही हमारा काम संपन्न हुआ तो हम आपके पास फिर आए और तब से हम अब तक निरंतर आपके साथ रहे। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। वक्त का पहिया घूमता रहता है और इसी के साथ आज के हमारे इस खूबसूरत सफर के समापन का समय भी आ पहुंचा है। आज दिन भर FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर सुरों की जो महफिल सजी, जो बातें हुई, जो नगमे हमने और आपने मिलकर गुनगुनाए, उम्मीद है कि उन्होंने आपके दिन को खास और शाम को यादगार बनाया होगा। वितस्ता की लहरों की तरह ही हमारी आवाज और आपकी मोहब्बत का ये सिलसिला यूं ही बहता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। पंक्तियां यूं है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस तारों को छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, बस तारों को छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। ये था आज के पंक्तियां आप सभी के लिए। कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी से देता हूं। 21 मई 2026 बृहस्पतिवार को सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से हम शुरुआत करती हैं और 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम एपिसोड 4, 8:30 सकारात्मक कहानियां, 9:30 रेट्रो हिट्स एपिसोड 4 और 10:25 पर दोस्ती अनमोल एपिसोड 2। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे आप सुनेंगे साइबर सिक्योरिटी अलर्ट एपिसोड और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 गजलें और 7 बजे सुनहरे पल यशोदास के ऊपर किया गया कार्यक्रम और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है खुशबू। तो ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे। हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं खूबसूरत जज्बात के साथ अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों के करीब रहें। कल सुबह फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, आपके जीवन का प्रवाह। कल सुबह मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।